नरचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सोपात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सोन वड़ा आख सब कोए के वड़ वड़ा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े

रहाउ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडे आई। सब सत सब तप सब चंगे आईया,

सो गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यासो हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सत गुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया

रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया। सिर सिर रिजिक संबाहे, ठाकुर काहे मान पाओ करिया। उड़े उड़ आवै सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावै, कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया।

गुण आख वखाणा। जो सेवा है जो सेवा है तुध जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह है हर त्यावह है तुध जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पहे जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।

सोई थीसी जो तू देह सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन

अवतरा काल पाए कार बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तारत तब देह अपारा जब अकारख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

उचारत भेदा जाको पेव न पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती

ते तज किनी उत पूज खान बहुर रच दिनी। कहू फूल राजा हवै बैठा कहू सिमट भयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार तय है ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई।

सहाय दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मात एक ना माने ओ।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्द ता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला, जित घर धारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया।

जिसका सब सो आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वासत तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड़ जाहे, पौ जल बिखम अस गाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोए न जाए जे आवै तो दयाहे। सलोक महला पंजवां अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाउ नेत्री सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाऊ।

तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

0: सुनिहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

दृष्ट तेरी राम जिहवाए को कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो

अनेक सेवा प्रमाण कर लेने की समान कथा बहुत ही सत्कार गुरु कर देगा जी। भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी आप जी कथा राय निहाल कर रहे हैं, बड़े प्यास आप जी ने कथा अनुसरण करने की कृपालता करने जी। फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

जिन सच पल्लै होए महला पंजवा। सज्जन मुख अनूप अठे पहर निहाल सा, सुतड़ी सो सौ डिठ, तै सुपने हों खनी है। महला पंजवा। सज्जन सच परख

जन प्रभ पाया। तरे कुटंब संग लोभ कुल सुबाया। निर्मल भय शरीर जन धूरी नाया।

नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै। एक भी न दे दस भी हिर ले तव मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रमीठा सर्व सुखता हु मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साव अपनी दे रास खात पीत बरत एन दुलास। अपनी मान कच बहुर साहु ले अज्ञानी मन रूस करे। अपनी प्रतीता भी खोवै बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस तिसिया गहरा कै प्रभु की आज्ञा मन मथ है उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत। सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यो रंग लावै। ओ बिन सहु मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार। लपट रहो तै अंध अंधार बटाओ स्यो जो लावै नेही। ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई। कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह विमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प को ही रह। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुआद। मिथ्या चरण पर विकार को तावह मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिरति साकत की आरजा साच बिना कह हुवत सूचा। बिरता नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बृता बिहाई मेक बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन ब्रिथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काऊ भीन। अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मरे। जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जन है अपना किया या पह मान या पह आप करत न बेरा। किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिस लय लड़ लाए थान तनंत रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अंग मेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लुभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पहरता का जस का विजय। जे प्रसाद तु सब को मान मुखता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सिची घर जावै। जे प्रसाद आरू कंचन देही लिव लाभ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उचे। जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे हे नानक ताकि भगत करे हे। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय
मन ति सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असव हस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबहु न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याई। जो कलख उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरह सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनहै करन नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज संभाव है। ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराज। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप जपाए जपै सो नाओ। आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम हुए सर्व निदान। प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लाओ तित लगै हर नाथ। नानक इन कह कछु नहात श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए। जो जो कह सुमुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता। साधना की अचर्य कथा अष्टपदी साधक संग मुखुजल होत साध संग मल सगली कोत। साधक संग मिटै बिमान साधक संग प्रगटै सुग्यान। साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उबर जतन। साधक महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी। साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा। साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन। साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूं तावे। साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न। साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग मां पुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर। साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप। अपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कबहूं तावै साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस सगु चरल है साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग श्रव थान गमु नानक साध के संग सफल जनामु। साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुकत हरै साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै नान कुदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगै ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग।
ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਵਖਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਧਗ ਉਪਮਾ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧਗ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸੁਧਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦਿਸ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਣਾਓ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰੇ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾਥ, ਮਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੂਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਿਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦਾਖਿਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਸਲੋਕ ਉਰ ਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸੁ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਭੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧਗੀ ਟੈਲ ਸੰਤਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨ ਮਨ ਤੇ ਠਹਿਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੂਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ, ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੇ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਉ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਚੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਚੈ, ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ,
आप दृढ़ वै नाम जपावे नानकु वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मन खुवे तिस भगवती कीमत उत्तम हुए भगवंत की टहल करे नित नीत मंतन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म मैं शुद्ध है राम नाम सारस पीवे उस पंडित के बदे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सासंग पावै जन कोई कर कृपा अंतर उतार है पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार है सर्व रूप का औखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाई धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने द्री आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी पर सगल संगा तुम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरख तैसा उसोग सदा अनंत है नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताई साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित घर रखे तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरि वापंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जानंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहु विदनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नान करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पात्र बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर्य नक्षत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच सब ते नेरे सबूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवे मरै कई कोट बोजूनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कालै थक पाहे कई कोट गीत तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै राखी नानक सब किछ प्रभ कै हाथी कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग
पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनु विस्तार कई बार पसरूपा सार सदा सदा एक अंकार कई कोट कीने बपात प्रभते हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारै को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सत सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै अपने जन को सास सास सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अलसो इष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रिहा समाई प्रभावै मानुक गत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखे प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पद सुधारै आप करे अपन विचारै दुहा सिरिया का आप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरनायावै कहु मानुख ते क्या हुयावै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिखिया मैं रचै जे जानता अपना बचै भरमे भूला दै दिस्तावै निमक माय चार कुंड फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब नवाजा का दिश कछु न आवै तिस तत्काल दै जिस प्रगटावै जा को अपनी करे बख्शीश ताका लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बड़ा इसका बना ही सहास करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू उच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद छिंद व्यवहार कबहू बकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबहू नृत्य करै बपात कबहू सोय रहै दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अपकीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रवरा कहते ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मूं धारी लावै ध्यान कबू तट दीर दि स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया नक जून पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै निचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबू सा संगत पावै उस स्थान ते बौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं बिनाश मंत नामृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्किनी आय आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गलेष्ट परी जिसके अंतराज बिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आप उसको करवंत कहा वह जन मर बहुजुन परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकिया मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तिन समान कर संग न जावै बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म रह तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर अवतार अनिक जतन करा तुमने द्रव है हर दरगह को कैसे गवै
आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रिंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाना मुझते कछु हुए तब इसको सुख ना ही कोई। जब जाना मैं किच करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता। जब तार कुबेरी मी तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे। सहस कटेला कूट तावे तृप्त न आवे। माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे। न तृप्त आवे कब कमरे बिना संतोख नहीं पूरा जय। सुपन मनोरथ वृथे सब का जय। नाम रंग सर्व सुख हुए बड भागी किसे प्राप्त हुए। करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचारु। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रवस हुए। जो किच किनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग। बूझे दिखे करे बबे का पहे का पह अनेक। मरे न बिन सया वह न जाय। नानक सद ही रहा समाया। पुपति सह समझया पापे रचिया सब के साथ। आप किनु अपन विस्तार सब का चुस्काव करने हार। उसते पिन कहो किछो एतान तनंतरे कैसो। अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आपार। मन में अमन अपने माहि नानक कीमत कह न जाय। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बख्यानी। सच सच सत सब कीना कोट मधे किने बिरला चीना। कोट मधे किने बिरला चीना भला भला भला तर रूप हुआ सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। घट घट सुनी श्रवण बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन पर है सोजन उतरन हार। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै। संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए। संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत हुए मलीन। संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखै न कोए। संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै। संतन कै दुखन काग जून लवै। संतन कै दुखन सर्प जून पाए। संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए। संतन कै दुखन त्रिगत जून किरमाए। संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै। संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन ते सब जाए। संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का था को नाही। नानक संत पावे तो पीगत पाए। संत का निंदक महतताई। संत का निंदक खिंटिक न पाई। संत का निंदक महत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन। संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक सर्व रोग। संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख। नानक संत पावे तंसका पी हो मूख। संत का दुखी सदा पवित्र। संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लाग गए। संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी मांकारी। संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जिन में मरे। संत की दुखना सुख ते टरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ। नानक संत पावे तां ले मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटे। संत का दुखी किते काज न पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान परमाइए। संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर तेतो था जो सास बिना मृतक की लो था। संत के दुखी की जड़ किचना है अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी गवर्न रखनहार। नानक संत पावे तां ले उबार। संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बेहून मछली तड़फड़ाई। संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक इंदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुट्टै केला ज्यो बुआड़ तिलखेत माही दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रह। संत का दुखी सदमिथ्या कैत किरत निंदक का तुर ही पया। नानक जो तिस भावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए। संत के दुखी को दर्द मिले सो जाए। संत का दुखी सदा सहकाई है। संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पुजै न आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्टै कोई। जैसा भाव है तैसा कोई होए पया। किरत न मिटै कोई। नानक जाने सच्चा सोई सब कर तिस क्यों करने हार। सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात। तिसे त्याहु सास गिरास सब कछ वरत है तिसका की। जैसा करे तैसा कोसी अपना के लाभ करने हार। दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे। बड़भागी नानक जन से। श्लोक तजो से आनप सुरजन हो।
सिमरो हर हर राई, एक आस हर मन रखू, नानक दुख भरम पौ जाय अष्टपदी। मानु की टेक वृथि सब जानु, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुत न तृष्ण लागे आए। मारे राखे कु आप, मानु कह किछ नाही हाथ, तिसका कुंभ सुख होए, तिसका नाम रख कंठपुर होए। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोई। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेग ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोपिंद। मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा बिड़भागी, तेजन जग माहे, सदा सुधार के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, सी तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पहचाने, तुत की उसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्योहर जन रह, तन दिन कीर्तन केवल बखियान, कृष्ण में सुई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटी है जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक सन लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो सन सुहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक हो किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाता सब उजिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई, सो न के जन्मे न किछ मरे, आपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आपन की जुग स्थाप थाप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण तारे हो ब्रह्मांड, अलक अपे पुर प्रताप, अलक अपे एव पुर प्रताप, आप जपाए नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करह बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम करमानु, जो किछ करे सुप्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुए सो हुए, करने हार पछाने सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माय समाये, हुए सुख निदान उन्हु बने आए, आपस को आप दिनो मानो, नानक प्रभ जने को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गाडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माए, तिस ते बिरथा कोई नाही, रे मन मेरे सदा हर जाप, अपनासी प्रभु आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचे कोय, तिस बिना ही तेरा किछ काम, गत नानक जापे एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल कट सो है, तनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब किस किसका दिया दर्व है, असुरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वै।

0: के हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सच इदिर सचा आकार, सच वर्त सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किच, त्रेहु गुण ते प्रभ भिन्न।
1: अविनाशी प्रभ मन में राख, मान के तू प्री त्याग, तिस्ते परे नाही किश कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बसंत, सात रेखी चरने पाओ, नानक के मन एन रहो, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई हो, हरन परन जा का नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर, आंदरू मंगल सर जाके, सर्व थोक सुनिए करतां के।

0: राज में राज, योग में योगी, तामित भी स्वर्गृत भोगी, त्याय त्याय भक्ते सुख पाया, नान से प्रकार किनियंत न पाया, जहां की लीला कीमत नाही, सगल देव हरि उगाही, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोही अपने सूत, समस्त ज्ञान त्याण जंदी, जनदास नाम त्यावे से, ते गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच दिस के स्थान, जय साजनावे तय सा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे रंग, नाना बिलकी नु विस्तार, रसी कंकार नाना चलत करे खन माहे, पूर्यो पुण सुठाए, नाना बिलकर बंत मनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नान करनाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे स्मृत वेद प्राण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे प्रिया सब पवन, नाम के संग उरे संसरण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पल में सोजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जा की वाणी, सत पुरख समय सुवाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करने निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिस पड़ी, सत नाम प्रभ का सुदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन सत उपदेश, सत ते जन जा किरे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए, नाम जो ताकत होए, आप सत किया सब सत, आप पे जाने अपनी मिसगत, जिसकी सिट सो करने हार, और न बूझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया, विस्मण विस्म भय विस्माज, जिन बूझिया तेसाया स्वाद, प्रभ के रंग राज रहे, गुर के बचन पदार्थ ले, ओए दाते दो कटन हार, जहां के संग परे संसार, जन का सेवक सोवड़ पाकी, जन के संग एक लागी, गुण गोविंद कीर्तन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आज सच जगाद सच, आय पी सच नानक हो सी पी सच, अटपरी जन सत सत परसन हार, पूजा सत सा सेवदार, दर्शन सत सत पेखण हार, नाम सत सा त्यावन हार, आप सत सा सब तारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सज संता, बूजन हार को सा सब कोए, नानक सत सत प्रसोए, सत स्वरूप रिजन मान्या, करण कराऊं दिन मूल पछाणिया, जा के हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान इस मन प्रगटाया, पाए ते निरपो ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜੇ ਤਿਉ ਜਿਆ ਤਿਸ ਮੈਂ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਇਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬੇਕ ਨਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇ ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਨਿਰਮਰੀਤ ਠਾਕਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੇ ਜਿਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾ ਸਾ ਸਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਰਪ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨੌਜ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਿਸਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਪਾਸਵ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਕੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਨਾ ਕਾਢ ਤਿਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖ ਦੇਖ ਰਾਤ ਮਾਣ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਰਖ ਉਡਾਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਅਵਰ ਨਾ ਨਿਟਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਊਠਸ ਬੈਠ ਸੁਖ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਤਕਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇ ਬਾਦ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵੋ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਤਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਵਿਖਾਣੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਣੂ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਅਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਉਠ ਲੇ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੋ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਔਰ ਸਿਆਣ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਖਦਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਟਪਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲੇਰੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤਿਆਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉੜਭਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ सेव क्यों रहे गुरु की आ गया मन में सह आप उसको कर कच न जनावे हर हर नाम रे सत्यावे मन बेचे सदगुर के पास दे सेवक के कार्यास सेवा कर हुए ने कमी जिसको हो प्राव समय अपनी कृपा हिसाब करे नान सो सेवक गुर की मतले बीस बिसरे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु चिरे हर नाओ अनक बार गुर कबुल जाओ सरबंदार जी का दाता आठ पैर पार ब्रहता ब्रह्मे जन जन्मे पार ब्रह्म एक आप नेक परम सह स्याण लैण जाइए नानक ऐसा गुरपागी पाई सबल दर्शन पेश पनीत पर सरचन गर निर्मरीत पेट संग राम गुरवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर वचन कर न गाने मन संतोख आत्मपत्याने पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अमरदृष्ट पेख्यो संत गुण बेंत कीमत ने पाए नान जिस पावे ते लय मिलाए जे बाएक उस्तत नेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू वो ना पूछ प्राणी अग्नि गोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ता की कीमत तीन पाई अणक भगत बंदनित करे चरण कमल हृदय सुरे सद बलिहारी सतगुरु अपने नान जी प्रसाद ऐसा प्रभु जपने रस पावे जन को अमृत पीवे अमर सोए उस प्रकार नाही कदे बनास जाके मन पलटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेवक को दे वो माया के संग न लेप मन में रखे हर एक अंधकार दिव्रगासे नानक परम दुखते नासे तौत मैं ठांड वर्ताए अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण देसे औ चूका निरपोहे बसे सगल ब्याज मानते खेण से जिसका सा दिन कृपा तारी साध संग जप नाम रारी तित पाई चूके परम गवण सुन नानक हर राजा सरगुण निर्गुण आप सरगुण पी होई कला तार दिन सगली मोई अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर इको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साध कै संग रचना अपनी कल तारी अनक बा नानक बलिहारी श्लोक
1: साध न चाले बिन भजन बिगया सगली चार हर हर नाम कुमावन नानक एह तनुसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाव समीत विसार हो चरण कमल रिदम है उरतारु करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ एह तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखु मन माही सर्व रोग नानक मिट जाही जिस तन गोचार कुंट उठता वह सो तन हर सेवा ते पावह
2: जिसु कौ नित बाचै मीत सो सुख साधु।

नाम समाए। सो क्यों बिसरै जी काल न भाने, सो क्यों बिसरै जी किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जी अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जी बिकते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन हो सी चार।

आसु उपजी प्रीत प्रेम रस्याओ मंथन अंतर ही सुआव नेत्रोपेख दर्शुक हुए मन भिक्षय सात चरण तोये भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभक संत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आत पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार

भगत भाई लावे मनहीत, हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निम करके गुण गाए, अनिक राज भोग बडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास लोक, सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार कछ न दृष्टि, तापापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समा, तब बैर विरोध के संकमा, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कौ किस व्यापत, जब अपना पाप पार ब्रह्म, तब मोह का किसोवत परम, अपन खेल आप वर्ती जाना, न करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी, जब एक कैरक में पार, तब नरक सुर कौ कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई, तब शिव शक्त कहो कित टाए, जब आप है आप अपनी जो तर है, तब कवन निडर कवन का डर है, अपन चलता आप करने हार, नानक ठाकुर गम पार, अविनाशी सुख अपना सुनत है, जन्म मरण को कहा बिना सुन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किसोए, जब अभिगत गोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछ तरीका, जब नाश निरंजन गोचर गादी, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपन आप आपी अचर जा, नानक अपन रूप आपियो पर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत को कीस, जय जो स्वरूपी जो संग समावे, तय किसे भूकमन तृप्तावे, करण करावन करने हार, नानक करते का नाई सुमार, जब अपनी शुभ अपन संग बनाई, तब कवन माए बा मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तय वेद कतिब कहा कुचीन, जब अपन आप अपुरधार है, तो सगन पसगन कहा विचार है, जय अपन ऊंच अपन आप नीरा, तय ठाव कौन ठाकुर कौन कही है चेहरा, विस्म रहे विस्म विस्मन विस्म रहे विस्मात, नानक गत अपनी गत जन हुआ आप, जय अचल चेद भिषम आया, उहां किसै व्यापत माया, पुसगो आपया देश, त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय कहे एक भगवंता, तय कौन चिंत किस लाग चिंता, जय अपन आप आप त्यारा, तय कौन कथय कौन सुन ने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय प्रच्यो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नो विस्तार, पापुन तय पई कहावत, को नर को सुर्ग बंछावत, वाल जल माया जिंजालो, हम मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपख्यान, अपन खेल आप कर देखे, खेल संकुचे तू नानक कह, जय भगत भगत है आप, जय पसर पासार संत प्रताप, दूपा कापी धनी उनकी शोभा, नु बनी आपे कौत कर, चोजु आपे रस भोग निरजोग, जिस भावे ते सप ना इलावे, जिस भावे ते खेल खिलावे, बेसुमार तागंत तो लै जो बुलावो, त्यो नानक दास बोले, श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार, अष्टपदी आप कथे आप सुन नैहार, आपे का विस्तार जत भावे तन सृष्ट उपाय, अपने भाने लय समाये, तुम ते पे नहीं किच होए, अपन सू सब जगत परोए, जा को प्रभ जीवा बजाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगुण श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सबता कहा, दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राखे तिसको न मारे, सो हुआ जिस मनो बिसारे, तिस तजबर कहा को जाय, सब चरे के निरंजन राय, जी की जुगत जाके सबहात, अंतर बाहर जानो साध, गुण निदान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो, ब्या प्रतपाल जीन भोपा, जो जो रचे सो तिसै त्या, जिस भावे तिसले मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हर नानक इक जानिया, जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आस न बिरती जाए, सेवक कौ सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जा कै मन वसिया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैरन, दिन बुझे गुर के पैरे, लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ्या पह मेले, सास मिल करो आनंद, गुण गावो प्र परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत वचन के गुण गावो, प्राण तरण का यह सुहाव, आठ पैर पिक प्रभ पिखो नीरा, मिटै ज्ञान बिन सह अंध हीरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन छे नानक फल पावो, हलत पल दो लिहो सुवार, राम नाम अंतर उतार,
पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिख्या मंत नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खिप तुम्हारी एका टेक रखो मन बाहि नानक बौर नया वह जाहि तिस्ते दूर कह कु जाए उबरै रखन हार त्याए निर्भउ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार किस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकि कार्य पूरा मत पूरी अमर जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर भय अमरा पद पाया सा सुंग नानक हर त्याया सलो ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान देर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्ट प्रदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मिठा सगल समग्री एक घट माही अनिक रंग नाना दृष्टाहे नव निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन हत्या नाथ कह न जाय चर विस्माद तिन देखिया जिसाप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत धरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौड़ पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसै सुमाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाउ गुरु प्रसाद नानक सुख पाऊ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्य सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले अपडोल न कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मूल न पाई गुण मूल सर्व ज्योत मैं जाके जो धार्यो स्वामी युत बोध गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम सगरचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत बचन साधु सब कह जो जो हो सोई सुख मान्य करण करावन हार प्रभु जाने अंतर वसे बाहर पियो भी नानक दर्शन देख सब वो ही आप सत की है सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पात तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार निकला लखी न जाए जिस भावै तिसले मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साब जनाए नानक दे जना बुझाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैना फिक नारा सगल समग्री जाका तन आपन जा साप ही सुना आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कै मद लिपतो रह जो कुछ कहना सो आपे कहे आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावै तां ले समाए उस्ते होई सुना ही बुरा उरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत निकी आपे जाने अपने जी की आप साच उतारी सब साच उत्पुत अपन संग्राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए तो सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक क्यों जान जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आए जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का है सुवाऊ जन कै संचित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा

के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस नित्या गो तरंग, संत जन की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करो, सास अग्न सागर तरहो, हर तन के पर ले हो पंडार, नान गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, सार संग पज परमानंद, नरक निवार उदारु जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है दार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत आधार, आप तरह लोक के निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहत वाजय, सुन सुन अर्ध करे प्रभु गा जय, प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए, मिट गए बैर भय सबरीन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेवा, जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभि खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधानी का गरचीत, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहूत निदान, सर्व इच्छा था की पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न हो आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल त्योदा, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, हे फल तिस जन

अवस्था की गत हुए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध सासंग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्त कर्म प्रपाई, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभु चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देहे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृतता की वाणी, एक नाम मन माहि सुमानी।

सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचा है सोच ना हो वई जे सोची लख वार चुप है चुप ना हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो ता एक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझे ता हमें कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंत्र खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखा है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया सुमाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई तवात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीपलो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईश्वर ब्रह्मा इंद सुना है मुख सा लाहन मंद सुना है जुग जुगत तान भेद सुना है शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अड़सठ का इशनान सुना है पड़ पड़ पावै मान सुना है लागै सहज त्यान
नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सरा गुणा के गाह, सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावै राहौ, सुनै हाथ होवै असगाहौ। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछै पछुताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावै मुख द्वार, मन्ने परवारै साधार, मन्ने तरै तारे गुर सिख, मन्ने नानक पावै ना पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावा है दरगा है मान, पंचै सो है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करै विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच का है विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी ही साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण ना वाय नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिय हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए। भरिय मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो।
आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। सुनया मनया मान कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वक्त कवण, कवण थेत कवण वार। कवण से रुती माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो का दिया, जे लिखन लेख कुराण। थेत वार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई। जा करता सिरठी कौ साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना। नानक आखण सब को आखे, एक दू एक सियाणा। वड़ा साहेब वड़ी नाई, कीता जाका होवे। नानक जे को आपाओ जाने, अगय गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके। वेद कहन एक वात, सहस अठारा कहन कते बा। असलू एक तात, लिखा होए ता लिखी है। लिखा होए विनाश, नानक वड़ा आखी है। आपे जाने आप, सलाही सलाहे एती सुरत न पाईया। नदियां अतवाह पवें समुंद, न जानिए समुंद साह। सुल्तान गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी। जे ते समन हो न विसरै, अंत न सिफती कहन न अंत। अंत न करण देन न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत। अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार। अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे। ताके अंत न पाए जाहे, इहो अंत न जाने कोए। बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। ऊंचे उपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए। तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए। वड़ा दाता तिल न तमाए, केते मंग है जोद अपार। केतिया गणत नहीं विचार, केते खप तुट है वेकार। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे। केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाण होए, होर आख ना सकै कोए। जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जितिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे, आखा है से पे केई के। जिसनो बख से सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल पंडार। अमुल आवा है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुल अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लेवलाए। आख वेद पाठ पुराण, आख पढ़े करह वख्याण। आख है ब्रह्मे, आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर, आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव, आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे, आख न सक है केई के। जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आख है बोल वे गाड, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे। केते राग परिस्यों कहिय न, केते गावन हारे। गावे तुहनो पाउन पाणी बैसंत्र, गावे राजा धर्म द्वारे। गावे चित गुप्त लेख जाने, लेख लेख धर्म विचारे।
गाव वह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारी। गावह इंद इंदासन बैठी देवतियां दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारी। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पायाले। गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले। गावै जोद महाबल सूरा गावै खाणी चारे। गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे सहारे। सेई तुद नो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई। सुपात साहौ साह पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंडा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सद जा की रिद सिद अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओ वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो वेडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एतराहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर। जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गाया जापै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश। केते बर में घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद। केतियां खाणी केतियां बाणी
केते पात नरेंद्र। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बिनोद कूड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़ी बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए। तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर। तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरै न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़िया

अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्री मुर रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिदान के देख फिरियो कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सोवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे इते पहे तो कहा पहे पूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान पजे बिनो अंत कौ अंत को अंत के तम सधारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार को देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है सोद सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरयार अब चारे सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़े गड़ान को तोड़न हार सोबात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजातिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਘਾਵਾਓ।

आप हाथ दय मोहे बचावहो, सुखी बसाय मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करियाय, सब बैरन कौ आज संगरियाय, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुमह शाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करे हौ रक्षा, राख ले हो मोहे रख न हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुध है जेती, बरनत पेन पेन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कि बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीने, ओत पूज खान बहुर राच दीने, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकरे कैठा, सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके पाप तनक मह हरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन नर नाम ते हारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी, सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तो जब पये दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावै सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई, सुने मूड चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई
संबत सतरह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ सब तोहे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार कहो शाड कह गहे ओ तुहार।

0: ओम वितंद्र त्रुगुतार हुच सें त्रोवे ओम विच परिये हुच दोवे हुच जाति जिंची कोवे
1: ओम विच मूरख ओम विच शरण मुख मुक्ति सारना।

0: ज्ञान वे होना कथत लूझे। नानक हुक्म लिखे ली जिह विख तेह विख महला दूजा।
1: हो मैं यह जाते हो मैं कर्म कमाए, हो मैं ये बंदना फिर जो नहीं पाए, हो मैं

गुरुग्रीमो अंतर्जामी सतगुरुजी आप जी अंदर ते हाजिर प्रणय है बेअंत गुरसिख माई पायो आप जी दे बणदे सतकार जो बेअंत माया बेटा कर दे आप जी सारण सिखी दान प्रसाद दान चरण कमल प्यार बख्शना खजाने पर पुरखने सो आओ गुरु प्यारे साथ संग जो कीर्तन दी निक सेवा प्रवान करनी हुईया भुलना चुका दिखी मकनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करे अज दे श्री मुखवाक दे विचार सत्कार्य उपाय साहिब भाई परमजीत सिंह जी उन्हां पासो सरवण करे दस वालो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: से सीता है और शासन संगठन बताया है कि लड़ी बरसात पर चल रहे हैं। हूँ भाई साहब 10 बजे तक काल लड़ी बरसात पर शर्म कराऊंगे शासन मारे बख्शिश हुई बेन प्रावण घर ना लड़ी बरसात रंभ किए ने नाल कर रहे हैं। होर सत्संग जी किसी ने कोई पाठ करना हो या होर कोई प्रोग्राम हो आप भाई जिंदर सिंह जी सैक्टर साहब ना जरूर संपर्क करके अपना नाम और नंबर दे दो ताकि वो थोड़ा नाम नाल दर्ज कर सकन। भाई सरों का नंबर है 4087124145। सत्संग जी आसन करने के जरूर बात करनी है। सत्संग जी मई 27 तो लैके 31 तक कीर्तन कर रहे हैं भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फिर सारी संगत बेनती है कि जरूर तुम आप इतने हाजरियां भर के समय लाभ उठाने जतन करो। मई 3 है स्पैशल ईवनिंग कीर्तन दरबार भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा स्वर्गवासी अमृतसर हजूरागी के जे पातशाह की याद में कीर्तन दरबार स्पैशल तौर पर हो रहे हैं। मई 3 भाई इंद्रजीत सिंह खालसा जी की याद में आप संगत ने उन्होंने प्यार मुख रखते हैं जरूर हाजरियां भरनिया ने। सत्संग जी जून 1 तो लैके 7 तक हर रोज कीर्तन दरबार होया करेंगे। जिन्हों बच्चों ने नौजवानों ने बीबिया ने शहीदियां दिखाई साका नीला तारा के समय सो सत्संग जी 1984 के उस गेड़ उन्होंने सारे की याद में 1 तो लैके 7 तक कीर्तन दरबार होया करेंगे। सत्संग जी जून 2 है जन्म संत बाबा जरनैल सिंह जी के पिंड वाले का आप जरूर हाजिर करो। जून 2 है लास्ट डेट ऑफ वोट जो असी पाने ने आए हैं वह 2 तरीक न है लास्ट डेट से जरूर सत्संग तो उसको पहला अपने वोट तुम्हें पाने की कृपालता करनी है। तो सत्संग जी जून 4 है अटैक अकाल तख्त साहब 1984 वाला उस दिन जरूर आयो तो उस समय याद करके जिन्होंने साडे वास्ते साढ़े सारे दुख अपनी चोरियों में पा के शहादा दिखाई ने उन्होंने याद करिए नजर पेट करिए। और सत्संग जी हूँ भाई साहब तैयार ने दैव पाठशाही कर्म कराने बड़े प्यार पाठशाला करने की कृपालता करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जी सतगुरां ने कृपा की है पावन श्री सहज पाठ का समा होया है। अज दे श्री सहज पाठ पावन अंग 252 तो अगे शुरू होने हैं। पावन पवित्र अंग 252 तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना।

जन्म मरण न हुए बिना सा, मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक घर ताके। श्लोक। लालच झूठ बिकार मोह, व्यापत मूड़े अंध, लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंध। पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहंग बुद्ध माया मद माते, या माया मह

अवर नह हो होवन हार होत सद आया ओआ कांत न काहू पाया कीट हस्त में पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना श्लोक आत्म रस जिह जाने आ हर रंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफलताहू को गनिए जास रसन हर हर जस पनिए आए बसह साधु के संगे अन दिन नाम त्या वह रंगे

श्लोक। यास जपत मन हुए आनंद, बिनसै दूजा पाओ, दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारू दुर्मत दो, तिसह त्याग सुख सहजे सो, यैया जाए परहो संत सरना, जिहे आसर या पव जल तरना।

नानक ते सुख पाया जाके हियर एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ईत ऊत के मीत गुर पूरे उपदेशया नानक जपिए नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तासु कौ जो अंत सहाई होए इह बिख्या दिन चार छे छाड़ चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धिया गृह बनता कछ संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक ते बहुर न आया श्लोक अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिए नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा कट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीर्थ इसनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हीता जो

एक पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंथ दिखा रह आपे काहू उद्यान प्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दिनो सो नानक लीनो श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम धन या भगतन की रास खिमा गरीबी अनद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिकस अनद स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावनी राम नाम गृहमाल खेद न दुख न डान ते जाको नदर करी नानक जो प्रभ भाणे आ पूरी तिना परी शलोक गण मिन देखो मने बाहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवहु सास सास जप नीत कहा बिसासा देह का बिलम न करहु मीत नह बारिक नह जोब नह बिरदी कछ बंध ओह बेरा नह बूझी है जो आए पर जम फंद ज्ञानी त्यानी चतुर पेख रहन नहीं एठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहा लपटाहे गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जाको प्रै सुहाग श्लोक कोखे शास्त्र वेद सब आन न कथ तो कोय आद जुगादी हुन होवत नानक एक है सोए पौड़ी कग्गा कल हो मन है एह बिन हर दूसर नाहे नह हुआ नह हुवना जत कत ऊही समाहे कूलह तो मन जो आवह सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनिक पुछताव है बिन हर भगत कहां थित पाव है कोल महारस अमृत तह पिया नानक हर गुर जा कौ दिया श्लोक गण काले सब दिवस सास नह बडन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रास काल ते जो साकत प्रभ कीन अनिक जोन जन मह मर है

छूटे, काची गागर सर पर फूटे। जो सो जीवत जे जीवत जपया, प्रगट भए नानक नह छपया। श्लोक चित चितवा चरनार बिंद, ऊंद कवल बिकसांत। प्रगट भए आप है गोविंद, नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, धन धन उआ दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दह दिस भ्रम आयो, भई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ।

साध सेव सुख पाए, नानक मनहु न बिसरै गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करूं तो एक की, जाते वृथा न कोए, मन तन मुख ही है बसै, जो चाहो सो होए। टहल

लोक। ठाक न होती तिन्हो दर, जेहे हो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते धन धन पौड़ी। ठठा मनुआ ठाह है नाही, जो सगल त्याग एक कह लपटाही। ठहक ठहक माया संग मुए, वाकै कुशल न कथ हुए।

गुर कै शब्द पहचान, या डेरा कौ श्रम कर काले, जाका तसु नहीं संग चाले, वा डेरा की सो मित जाने, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान।

अहंग बुद्ध विकराल, सुख पाव हो सहज बसहु दर्शन देख निहाल। ढेरी जम मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रह हाँ हाँ आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साध जना शरणाए, दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हाँ ना तू नह छुट है निकट न जाइयो दूत। पौड़ी

जास बसै मन नाऊ गत पावह मत हुए प्रगास महली पावह ठाऊ ताहू संग न धन चले गृह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज ताता कछु न हुई है जो ताप निवारे आप प्रतपाले नानक हम है आपह माई बाप। श्लोक थाके बहुबिद काल ते तृप्त न तृष्णा लाथ संच संच साकत मुए नानक माया न साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काए प्रसार हो पाव अनिक बंच बल छल करहु माया एक उपाव थैली संचो श्रम करहु थाक पर हो गावार मन कै काम न आवई अंते अवसर बार थित पाव हो गोबिंद भजहु संत की सिख लेहु प्रीत करहु सद एक स्यों।

पौड़ी। तदा तावत तौ मिटै संत संग हुए बासु, तोरते कृपा करहु आप तौ हुए मन है परगासु। तन साचा तेउ सच साहा, हर हर पूंजी नाम विसाहा। धीरज जस सो बाते बनिया, हर हर नाम श्रवण जिह सुनिया। गुरमुख जिह कट रहे समाई, नानक तेह जन मिली वडाई। सलोक।

गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग में पाया फिर

जप सोई। करहु कृपा प्रभ कर नैहारे, मेल लेहो नानक बेचारे। श्लोक बिनो सनु तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल। सुख संपै बहु भोग रस, नानक सादरवाल। पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा, वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा। बीरा आपन बुरा मिटावै, ताहू बुरा निकट नहीं आवै। बाधे आपन हो बंधा, दोष देत आगह कौ अंधा। बात चीत सब रही सियानप, जिस है जनाव हो सो जाने नानक। श्लोक पै पंजन अग दुख नास, मन है अराध हरे। संत संग जे रिद बसेओ, नानक ते ना भ्रमे। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुपना।

भगवंत पौड़ी मम्मा जाहु मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख वाकै समत बिचारा नरक सुरक रहत अवतारा ताहु संग ताहु निरलेपा पूरन घट घट पुरख बिसेखा वा रसमै वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। श्लोक यार मीत सुन साजन हूं बिन हर छूटन नाहे नानक ते बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी यया जतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कहा लो सिदिया याहू जतन कर होत छुटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरन धार है सबको वाहे जपे बिन उबर नाहू याहू तरन तारन समराथा राख लिहो निर्गुण निर नरनाथा मन बच क्रम जहे आप जनाई नानक तेह मत प्रगटिया। श्लोक।

हर पौड़ी। रारा रेन होत सब जाकी, तज अभिमान छुटे तेरी बाकी। रण दरगह तो सी जह पाही, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह

काहू, घट घट अंतर ब्रह्म सुमाहू, वासुदेव जल थल मह रविया, गुर प्रसाद विरलैही गविया, वैर विरोध मिटे तेह मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वैर विरोध मिटे तेह मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संग जी, आप जी धनता योग हो जो निता प्रति गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, पावन बाणी दे पाठ आपां सरवण कीते हन, नाल कीते हन। गुरु कृपा करे पढ़ी सुनी बाणी दा भाव हिरदिया विच सतगुरु जी वसा देन, दरों करों चढ़दी कला, नामदान गुरसिखी जीवन गुरदेव जी बख्शिश करके नवाजन। पावन पवित्र बाणी पढ़दे हां, बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शन योग ने भुल्लां ना चितार दे। प्यार सत फतेह गजाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याई हर पुरख निरंजना रहाउ जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी वड भाग्य

अज कृपा रहमत कीती है आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी काका नरेंद्र सिंह सपुत्र सरदार जसपाल सिंह बीबी जसवीर कौर अते बच्ची नवनीत कौर

और प्रतीत बख्शिश कर तीन वजना सेवका दिया अरदासा बेनतियां दरते प्रवान करनिया सतगुरु जीओ इस वक्त सुभाग जोड़ी वालों खुशियां दे समय आप जी नू सुंदर पोशाके भेट किते गए आप जी अंगीकार करो सदीव काल लोक परलोक पढ़दे कजने बख्शिश किते भंडारियां विचों पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते बेअंत माया अरदास भेटाई आप जी ने दसा नोहां दियां किरत कमाईयां नू सफलियां करना सतगुरु जीओ बेअंत संगतां ने

0: सुंदर जाते हुए पर गाते प्रभु जाते कमल पर गाते
1: प्रभु
0: दान कर तेरी नया आपकी कशु न की हूँ नया
1: आवर्ग
0: अगवा।